0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्स के किन्नुस।
5: बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक मुनि संपर्क नंबर 5320411 98020676888।
4: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजे सम्म र साँझ 8 बजे देखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योतिमा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

मित्रों, भगवान श्री राम जैसा कोई देव न तो दुनिया में कभी आया और ना ही आएगा। संसार का कल्याण करने वाले श्री राम की दया, कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है। वो तो अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। भगवान श्री राम भक्तों से अथाह प्रेम के न जाने कितने कितने सच्चे प्रसंग हैं, जिस

वनवास तो श्री राम घर से जाने लगे, सभी रघुवीर को रो रो के ये समझाने लगे, तुम्हारी कमी ना हो पाएगी कभी भी पूरी, दिल की बातें वो प्रभु राम को बताने लगे। पिता की आज्ञा को श्री राम ने बड़ा माना, लगे कहने की वचन पूरा करने है जाना। लखन और सिया संग छोड़ दिए सुख सारे, जाके पहुँचे हैं वो सभी गंगा जी के किनारे। बोले केवट से हमें गंगा पार करवा दो, अपनी इस नाव से हमें उस पार उतरवा दो। तब केवट ने

सीता मैया के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के लिए निर्जन वन में पहुंच गए और वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। मगर एक दिन छल से लंकापति राक्षस राज रावण माँ सीता का अपहरण करके ले गया। राम और लक्ष्मण सीता मैया की खोज में दर

सीता की खोज में वन वन वो भटकने लगे, कभी पेड़ों से कभी डाली फूल पत्तों से, सभी से पता प्रिय सीता जी का पूछने लगे, मगर कोई भी उनके बारे में न बता सका, जीव जंतु भी कोई दे न सके उनका पता। उधर श्री राम भक्त शबरी इंतजार में थी, राम कब आएंगे कोई तो बता दे ये जरा, भाग्य ने दिया साथ राम लखन संग आए, भाव में झूठे बेर शबरी के राम ने खाए। शबरी शबरी भी मीठे

जब पक्षीराज घायल जटायु ने श्री राम जी को रावण द्वारा माता सिया के अपहरण और माता को उससे छुड़ाने के लिए युद्ध और घायल होने का पूरा विवरण सुनाया, तब श्री राम ने जटायु जी को मुक्ति दी और उसके बाद हनुमान जी लंका जाकर माता की खबर लाने को तैयार हो गए। सीता मैया की खबर लाने को हनुमान चले, दुष्ट रावण को सबक सिखाने को हनुमान चले। अपनी शक्ति से सागर को उन्होंने पार किया, अशोक वाटिका पहुंचे जहां थी मात सिया। देखे श्री राम की अंगूठी उन्हें परिचय दिया, वीर हनुमत को देख खुश हुई है राम प्रिया। खाके फल भूख मिटाई और राक्षस मारे, वीर हनुमान की शक्ति से है वो सभी हारे। पकड़ा रावण ने तो जला दी उसकी लंका, लौट आए वो और मिटा दी राम की शंका। पाके पाके सीता की खबर राम जी है हर्षाए, बड़े ही भाव से महावीर को वो गले लगाए। गले लगाने के बाद श्री राम के आंखों से आंसू छलक आए और देखिए

उसके बाद भारी युद्ध हुआ जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए। राम जी अपने भाई की ऐसी स्थिति देखकर विलाप करने लगे। तब हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए जिन्होंने लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवन बूटी की महत्ता बताई, जिसे लेने के लिए हनुमान जी तैयार हो गए। देख कर अचेत लखन को राम जी घबराए, करूं क्या जतन समझ उनको कुछ ना आए। तब लंका से हनुमत जी वैद्य सुषेण को लाए, परीक्षण करके

उसके उपचार से ये ठीक जल्द हो जाएंगे। चले बूटी को हनुमान बिना देरी लगाए, सुबह से पहले वो संजीवनी लेकर आए। पिलाया घोल संजीवनी का चेतनाई, सबके चेहरों पर वहां थी खुशियां छाई। लखन जी ठीक हुए, राम जी हर्षाते हैं, प्यारे हनुमान को श्री राम गले से लगाते हैं। हनुमान को गले से लगाकर श्री राम जी भावुक हो गए, आंसू उनके नैनों से छलकने लगे। और तब

माता सबूरी ने मतंग मुनि के आश्रम में सालों साल प्रतीक्षा की। लोग उसे पागल तक कहने लगे, किंतु सबरी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। मतंग मुनि ने समाधि लेने से पहले माता सबरी को बता दिया था कि प्रभु श्री राम

सीता माता की खोज करते करते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों सबरी की कुटिया तक आ गए। माता सबरी को श्री राम को पहचानने में तनिक भी देर न लगी और वो श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगी।

माता सबरी ने प्रभु राम को आसन पर बिठाया और जो मीठे बेर उसने चख चख कर अपने प्रभु के लिए इकट्ठे करके रखे थे वो प्रभु राम को खाने के लिए देने लगी। और प्रभु राम भी सबरी की भक्ति के वश में होकर बड़े प्रेम से उन जूठे बेरों को खाने

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्रालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र सन्तुष्टिको लागि
2: सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर प्यालेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं पिउखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।
3: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
4: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
3: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
5: जेजे ज्वेलर्स
3: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्स मा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्स कै किन्नुस।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी। संपर्क नंबर 5320411 98026788।
3: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

खीरा मुखड़ा प्यारा, क्या खोई है गुड़िया तेरी, क्या है किसी ने मा...

वाला, मैं उसी में पड़ा हुआ है तेरा काबिर वाला, पर कैसे टूटे ताला, तू मंत्र तुझे

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक शूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: સાવેલ છુચ્ચે પાટી
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई सदैव।
1: FM AJ 104.8 MHz।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

हमारी प्यारी प्राण वल्लभा, प्राण वल्लभा बरसाने में। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम।

0: चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्।
1: आदरणीय श्रोता, अब श्री कृष्ण

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता श्री श्री रवि शङ्करज्यूको प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौँ।
1: एक निंदनीय स्थिति में लेके आते हैं और परमात्मा को बाहर देखते हैं, कहीं दूर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति से मूर्ख और कोई नहीं। भाई ईश्वर तुझमें है, तेरे ख्याल उसी के हैं, तेरे भावनाएं भी उसी में चल रही हैं, सब कुछ उसी में है। उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो कोई तो खोजता है ईश्वर अंदर और जगत को संसार को दोष देता रहता है, गाली देता रहता है, संसार को निंदा करके ईश्वर की पाने की चेष्टा में कुछ लोग लगे रहते हैं, ये भी मूर्ख है। और कोई लोग खुद को निंदा करते हुए कहीं दूर पर ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। जब लोग बोलते क्या तुम ईश्वर हो, ये बड़ा अपराध है। कोई कह दे कि मैं ईश्वर हूं, ये तो बड़ा ब्लास्फेमी बोलते हैं, अपराध है, बहुत बड़ा गलती कर गया अपने आप को ईश्वर बोलता। ये विदेशी लोगों का ख्याल है, अपने आप को ईश्वर कहना बहुत बड़ा अपराध समझते हैं। क्यों, तुम तो पापी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कैसे ईश्वर हो सकते हो। जितना खुद को निंदा कर सकते हो उतना निंदा करते हैं, और ईश्वर बड़े दयालु करुणालु सब गुणों के आगार सागर है, कहीं दूर है, पता नहीं स्वर्ग में ऊपर, मरने के बाद कभी मिलन कभी एक हो गया हो जाए। इस तरह की एक आशा लगा के ईश्वर को बहुत दूर देखते हैं पाश्चिमात्य संस्कृति का ये बहुत। पश्चिम में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि तुझ में ईश्वर है।

तेरे बाहर भी है। और हमारे हिंदुस्तान में दुनिया को गाली दे, ये माया है, ये सब बेकार है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, अंतरात्मा है, अपने अंदर आत्मा में ही खोजो और बाहर सब बेकार है। इस संसार को गाली दे दे करके हम थक गए, मगर वैदिक परंपरा ये नहीं है। संसार को गाली मत दो, यह प्रकृति लीन सब महेश्वरा, इस प्रकृति में लीन है परमेश्वर। भगवान कृष्ण कहते भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति अम्मे बिन्ना प्रकृति रष्टदा। मेरी प्रकृति है दैवी शेषा गुणमयी मम माया, मेरी माया है, मेरी प्रकृति है, ये देवी है, इसको नमन करो, इसको नहीं दोष मत दो ना। समाज की निंदा करके तुम ईश्वर को नहीं पा सकते, संसार को कुचल करके तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। संसार को वंदना करो, सेवा करो। भाई यदि ये संसार ईश्वर की ही एक ईश्वर से रचाई गई एक तस्वीर है और तुम तस्वीर को निकम्मा समझते हैं तो तस्वीर बनाने वाला इतना और निकम्मा होगा। तस्वीर को तुम गाली देते तो किसकी मिली वो गाली, किसकी हुई, तो ईश्वर की ही निंदा हो। ये ना समझ है लोग जो संसार की कर करके ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। मगर जनक को अष्टावक्र एक और ही बात कह रहे हैं, भाई तेरे भीतर बाहर परमात्मा है, सिर्फ भीतर ही नहीं है और सिर्फ बाहर ही कहीं दूर ही नहीं है, भीतर भी बाहर भी। नित्यम निरंतरम ब्रह्मा सर्वभूत गणेश तथा, इतना कहकर अपना वाणी को उन्होंने विश्राम दिया। एक ज्ञानी सिर्फ बोलते ही नहीं रहता, सुनता भी है। जितना बोला गया है उसको सुनने वाले ने सुना है क्या, उसको कितना ग्रहण किया ये भी देखता। तो अष्टावक्र से ये बोर के चुप हुए, तो दूसरा प्रकरण जनक ने बोला। अब जनक की भारी आ गई, तो दूसरा प्रकरण जनक ने बोला। अब जनक की भारी आ गई,

सारा जीवन एक प्रयत्न है। जो अभिव्यक्त नहीं कर सकते उसको अभिव्यक्त करने जन्म सूक्ष्म से स्थूल मगर मुक्ति स्थूल से फिर सूक्ष्म के ओर।

स्थूल को तो पा लिया हम, शरीर स्थूल है, पर ये स्थूल शरीर से सूक्ष्मता की ओर चल पाते हैं। यही आत्मज्ञान। स्थूल अनेकता है, सूक्ष्म एक है। अनेकता से एकता की ओर जाने की, उल्टा ही जीवन है।

विविधता में खो जाता है, खो के जड़ हो जाता है, पर जैसे होश आया इसका बंधन महसूस होने लगा। अरे भाई मैं कहाँ था, मैं कौन था, कहाँ फंस गया। बंधन का महसूस होना ही एक बहुत बड़ी बात, फिर मुक्ति के ओर चल पड़ना जीवन का सच्चा पथ है। सहज है अष्टावक्र अहो निरंजन। अक्सर लोग प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं, उत्तर सुनते भी नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए प्रश्न पूछते। मैं भी बैठा हूं यहां पर और जो उत्तर देने वाले उत्तर देते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। अरे प्रश्न पूछना हमारा काम, उत्तर लेना थोड़ी ना, कि लोग भी जान जाएं हम भी बैठे हैं सभा में और हम भी बुद्धिमान हैं। प्रश्न पूछने वाले बुद्धिमान समझा जाए। जो बोलना था बोल के चुप हो गए अष्टावक्र, जनक के तरफ देख रहे हैं। जनक के मुंह से उद्गार निकला, अहो वाह, कुछ पता चल गया, कुछ उपलब्धि होगी। अभी तक जो खोया तो वो मिल गया हाथ में। करीब करीब उछले वो अपने कुर्सी से, अहो कुछ ऐसा। जब घटना घट जाता है आदमी चुपचाप नहीं बैठ जाता, सोए सोए नहीं सुनता, हो नहीं पाता, उसके भीतर से ऐसा उद्धार निकलता है, ऐसे शब्द हमारे भीतर से निकलते हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है। उसका अर्थ नहीं है, उसका भाव है। वो भाषा से परे है, सबके पहचान में है। अहो कहने पर